जब कोई अपना दुनिया से विदा होता है तो दर्द बहुत ज्यादा होता है। ऊपर से आखिरी रस्मों की जिम्मेदारियाँ, पूरी धार्मिक रीति और भरपूर हमदर्दी के साथ फ्यूनरल कराते हैं एशियन फ्यूनरल केयर। सर्विस हॉल या इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन, स्नान या दूसरी सहूलियत, दुख की ऐसी घड़ी में कॉन्टैक्ट संजय लोधिया एट एशियन फ्यूनरल केयर, 35 कैंटन पार्क परेड कैंटन रोड और 66 मोनार्क परेड लंदन रोड मिचम। फोन 0208 909 3030 और विजिट एशियन फ्यूनरल केयर.com।

0: TUI, we give you more. More outfit choices with 20 kilograms of luggage allowance as standard. More hotels built around what you love, like that swim-up suite. More race you to the bottom, water parks on site. More, ooh, that looks good, food options from poolside snacks to a la carte dining. Book on app, in-store or online. You book it, TUI sort it. Atoll and Aptar Protected. T's and C's apply. Selected hotels only. See website for details.
1: ZTV HD पर देखिए नई कहानी तू ही रे दिल में।
2: स्वाति, जब से लाइफ में आई है, लाइफ ना कंप्लीट सी लगती है।
3: इतना ही प्यार हमेशा रहेगा ना संजय?
4: मगर नियति को क्या कुछ और ही है मंजूर?
5: वृंदा, तेरे सपनों का राजकुमार अब सच में तेरा होने जा रहा है।
4: तीन मासूम जिंदगियां किस्मत के जाल में।
1: तू ही रे दिल में, रोज शाम 5 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394 and Z5 app.

बाटू के तुझे भी कम ना रहे। जो ढूंढने जाओगे मुझसे अच्छी वजह तो ढूंढ ना पाओगे प्यार ऐसा उसमें नहीं शक मुझे। But I want you to stay।

0: शायद तू नहीं, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के

0: Quality foods.
1: Dad, where have you been?
2: I went to supermarket. Snack shack chahiye si. Big World Cup football match today on TV and movie afterwards.
1: We had popcorn and crisps, Dad.
2: I'm a desi. I need my Indian snacks. Supermarket with chatwal milia.
1: Uncle Chatwal?
2: Nahin, chatwal de namkeen range. Plain bhujia, aloo bhujia, khatta meetha, neembu masala, navratan mix and moong dal. Oye, main full selection chak le aaya. It's coming home. It's coming home. Chatwals and football is coming home.
3: Chatwal's Mazadar Spicy Indian Snacks, a brand from SOP International. Now available at major supermarkets and your trusted local Asian supermarkets.
4: जब कोई अपना दुनिया से विदा होता है तो दर्द बहुत ज्यादा होता है. ऊपर से आखिरी रस्मों की जिम्मेदारियाँ, पूरी धार्मिक रीति और भरपूर हमदर्दी के साथ फ्यूनरल कराते हैं एशियन फ्यूनरल केयर. सर्विस हॉल या इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन, स्नान या दूसरी सहूलियत, दुख की ऐसी घड़ी में कॉन्टैक्ट संजय लोधिया एट एशियन फ्यूनरल केयर, 35 कैंटन पार्क परेड, कैंटन रोड, और 66 मोनार्क परेड, लंदन रोड, मिचम. फोन 0208-909-3030 और विजिट asianfuneralcare.com.
5: The Love Lounge on Sunrise, brought to you by ZTV's Tumse Tum Tak. Daily at 8:30 PM on Sky 707, Virgin 809 and Z5.
6: Coming up, let's see his lot in, so get texting on 0795-700-272. But first, Behayali from Kabir Singh. You're locked into Nads and the UK's biggest Asia Mix. Good evening.

वो फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

उज़्म नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।